ही समत्री पुरानी तनु विदित सकल संसार कौशिक सुनो बंद यह बाल कुटिल काल बस निज कुल घाल तुम हट कहु जो चाहो उबार कहीं ताप बल रोष हमारा सूर समर करनी करही कहीं न जनाब ही आप विद्यमान रण पाये कायर करही प्रलाप राम मात्र लघु नाम हमारा परशु सहित बर नाम तुम्हार कहु सुभाहु न कुल ही प्रसंसी कालहु डरहि न रण रघुवंशी विप्र वंश के असि प्रभुताई अभय होई जो तुमहि डराई सुनि विदु गुण बचन रघुपति के उखरे पटल परस